0: संख्या को लुख करा जिस बत रखे आप सो पवजल तराय भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करे सो पूरा प्रधान जिसनो बल तराय जिसे जराए आप सोई अजर जराय तिसे मिलिया सच मंत्र गुर मन तराय
1: जन्म।

अनहद भजै सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कत नाहि रहा। जय सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बपार। नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा आवन नाहि।

बेदी ले चक्कर पियंगा भेटी लहराए नसंगा चूकी ले मोह में आसा सस गिनो सुरग रासा जब कुंभक भरपुर लीना तै बाजे अनहद बीना भगते बक शब्द सुनाया सुनते सुन मन बसाया कर करता।

तत् रस अमृत पीजाय। राम कली बाणी रविदास जी की एको अंकार, सतगुर प्रसाद पढ़ीऐ गुणीऐ नाम सब सुनीऐ, अनपौ भाउ न दर्शै, लोहा कंचन हिरणोय कैसे जो पारसै ना परसै।

सब पर हर पास तरी राव, हर हर नाम जपे अराधे, सेवक पाए खरे किल बिख दुख गए सब निकर, ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे पंच दोखे आसाद नगर में, एक खिन पल दूर करे वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे तिन की संगत देहो प्रभ, जाचो मैं मूढ़ मुग्ध निस्तरै, कृपा कृपा धार जग जीवना रख लेवो शरण परे, नानक जन तुमरी शरणाई,

हर तारी हर किरपले राम, हर हर अगमया हर हर अगमया गोचर स्वामी, जान जाप मिल सलला सलले, हर के संता मिल राम, रस पाया हम जन कहे बल बलले, परखोत

जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखेरा उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजना।

सर हर त्यायो जन पग लगेरा जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभ सरन गे तुम सरना।

आनंद आनंद पहे हर आवते सुने मेरे लाल जन नानक हर हर पहे जन नानक हर हर मिले पहे गुलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन

तब कुशल खेम सब थियो साध संगत नानक प्रगास्यो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा।

कर माने मेरे ठाकर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस।

मिल हर जन हर निसतारे, ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया, हृदय अंतर हर जन पारे, सरदा सरदा उपा

नित जगरते जगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वशलनाया प्रहलाद जन हरनाख बकरे हर राख लियो तराया हर चेत रे मन महल पावन।

बिनस जाए परतापै डांड धर्म राई का लागा सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी ज्यो रंग मजीठ बहु लागा काया कापर चीर बहु फारी हर रंग न लहे सुभागा

अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार रहा जिना मस्तक लिखे लिखे आते मिले संगार संसार।

जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरख बरस मेगा, जैसे पालन शरण सेंगा, गरुड़ मुखा नहीं सरपत रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बलास,

जाहौं करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया तू सच्चा साहिब

गामण तदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनु गावन ज्योत पावन

रह सुखवासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक

ब्याबद कोई अड़ल सुने गुंजो याहे सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाव निकटना तर के रहा ओयो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबद सत्रह सहस पणिज अर्ध सहसमन तीन कह जाय भादरु सदी अष्टमी रववारा तीर सदरव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत अफजू

अपना जान करो प्रतवारा, तुम साहे मैं किंकर थारा, दा जानदा हाथ उबारो अमरे सबैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता विदनाना, कृष्ण जथा मत चिरतरो चारो, चू को कबले हो सुधारो कभी भाई दोहरा। जो निज ब्रह्मो सो कहा, सो कहे हो जग माहे, जो ते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाए।

पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गाओ नितुड़त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस गुरु रजले दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी बुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने हर गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत की ए फल होई आद व्याद शब सके न कोई समत सत्रह सह

ग्रंथ सगल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक राम आन्यो सेमरत शास्त्र वेद सबै।

नाम आधार जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जमी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी हाँ जी कबीर को

0: गुरु प्यारी साध संगत सतगुरु की अपार बख्शिश का सदका अज की हाजरी सतगुरु ने मेहर भरिया आसीस ते हथ रख के संपूर्ण करवाई है। सारी संगत आसीस बख्शियो साडे सत्कार योग परम मित्र धन गुरु रामदास पातशाह दे बरसाए हुए गुरमुख प्यारे विद्वान गुरु के कीर्तनीय पंथ दे महान हस्ती सरदार श्री सरबजीत सिंह जी लाडी ओ हुण आप जी नूं गुरु शब्द नाल निहाल करनगे। पुल्लां चुक्कां दी खिम करो आसीस बख्शियो गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी श्री पांटा साहब जी वाले कीर्तन जथे का। हुण भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी हजूर रागी सचखंड श्री दरबार साहब कीर्तन जथा जो कि साढ़े पास पहुंचे हैं अज अते कल दुपहर के दीवान हाजरी भरनगे। उन्होंने पासों शब्द कीर्तन सरवण करो। कल विशेष जो कि नवा महीना चढ़ना है संगरां का दिहाड़ा है सवेरे शाम के दीवान सजनगे आप जी ने हाजरी भरनी है जी। आउन कीर्तन नाल जुड़ना करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सहस पाद बिमल नान एक पाद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहि सब मह जोत जोत है सोए तिसदै चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मन।

साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सो

आपे चगर चुकावे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का पवित्र मुखवाक राग बैराड़ी दे विच है जी अंग 719 720 ते विराजमान है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी ओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेस तन माय मिटावो सिमरो जास में संबर एक नाम जब त्यागंत नेक वेद प्राण सिमरत सोध आखिर किन्ने राम नाम एक आखिर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी नावै

सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभु के सिमरन दरगह मानी प्रभु के सिमरन होए सो भला प्रभु के सिमरन सुबल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सबके सुजय प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माए समाए प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभु को सिमरे से पर उपकारी प्रभु को सिमरे तिन सत बलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरे बसे अरनेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबू न झूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सह समानी प्रभु के सिमरन ने चले आसन प्रभु के सिमरन कमल बगासन प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जिन को प्रभु मैया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पै सद जति दाते हर सिमरन नी चौ कुंड जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल कारा हर सिमरन में आप निकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ संत मारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाय जय मां भ्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक जोन जन्मे मर जाम अनक पुन्ह चन करत नहीं तरे हर को नाम कोड पाप पर हरे गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया ला करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तरे अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत गावे जे मार गे जात केला तै हर का नाम संग होत सुहेला

के नाम की तुम्हें ऊपर शाम जहां त्रिका मंतुज करके तह नानक हर हर अमृत बरके भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओढ़ हर कह नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद सात कमात हर जन कह हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कह बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कह नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपरे न भंग हर का नाम जन की बड़ियाए हर कह नाम जन शोभा पाए हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत किस नाम जोग जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कह उठ सताने हर प्रताप जने अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते

नौ खंड पृथ्वी फ्रे चर जीवे मां दास्त पीसर थीवे अगन माह अमत प्राण कन का सब है भरपूम दान न्योली कर्म करे बवासन जैन मार संजम अत साधन निमख निमख कर सीर कटावे तो भी होमे महल न जावे हर के नाम संसर कछ नाए नान गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीर्थ दे छुटे गरु घुमान नमते उठे सोच करे दिन सिर रात मन की महल न तंते जात इस देही को बहु साधना करे मनते कबू न बिखिया टरे जल तो वे बो दे नीत शुद्ध का वे काची पीत मन हर के नाम किमे माऊच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहु सियाण जमका पो व्यापे अनंग जतन कर तृष्णा थ्रापे

तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे। कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊंचा भगवंत। सर्व समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभु छोड़ कै लागे आन स्वाई।

विकराल मिथ्यारथस्तीय सभस्त्र मिथ्यारंग संग माया पीकस्ता मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भक्त साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर कुहरे मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे

सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राजरंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर्जे ज्यों बसदा को खोदे को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का ये गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैन लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन हो प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नायो मान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सबते नीचा,

निवास। मंत्र नाम रते करंग सदा से पार ब्रह्म के संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम।

संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखे न कोए, संत के दुखन थान पृष्ठ होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत कह दुखन ते मुख भवे, संतन कह दुखन कागज लवे, संतन कह दुखन सर्व जोन पाए, संत कह दुखन त्रिग जोन क्रमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी गाथा को नाए, नानक संत भावे ता होए भी गत पाए, संत का निंदक मात आए, संत का निंदक किंटक न पाए, संत का निंदक माप त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सब योग, संत की निंदा दोख में दोख, नान संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा वित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते डरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी यद बीज ते टूटे, संत का दुखी कदे काज ना बहुचे, संत के दुखी को ध्यान भरमाइये, संत का दुखी अवजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर दे थोथा, ज्यों सास बना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे,

मछली त्रिफड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो भाव की तने द्रापे संत का दुखी छुटे अकेला से ज्यो बुआड़ तिल खेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथया कैद किरत निंद का तुरही पया नानक ज्योतिष भावे सोई थिया संत का दुखे बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गए मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजना आसा संत का दुखी उठ चले निरासा संत के दुख न दृष्टे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कर दिसके ओ करने हार सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात से त्यावो सास ग्रास साब किस वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों

हरन भरन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंदरूप मंगल सज्जा के सर्व थोक सुनिया करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तबिसर किस में भोगी।

अनासी एकंकार नाना चलत करे खिनमाए पूरे ओ पून सौठाए नाना बितकर बंत बनाए अपने कीमते आपे पाए सब कर दिसके सब दिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमृत वेद प्राण नाम के धारे सुनन ज्ञान।

रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली।

दात करे भगता तुमके चाय प्राभ अपने सो रह समाये जो हो आज हो सो जाने प्रभ अपने का हुकुम बछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ से जूरे कौन आने से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तने अपना तिन जान दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर थो का दाता तिसकी सरण सर सुख पावे तिसके दसब भाव मिटावे अवर सियान सगली शार आवर सियान सगली छाट तिस जन की तू सेवा लाग।

सब जी प्रीत प्रेम रचाओ मंतने अंतरे सुहाओ नेत्रो पेख दर्शको है मन विकसे सा चन तो है भगत जना कह मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मैं आ गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर समाए प्राभ बख्शन दीन दयाल भगत वसल सदा कृपाल नाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हाम निर्गुण हार नीच जान नानक तुम्हरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंड मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुंगाए अनक राज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती अरानीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय से पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख ज्ञान प्रगास श्लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही पर जाप अष्टपदी जब आकारे कृष्णा दृष्टे ताप अपन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समात वैर विरोध के संकमात जाविस का वर्ण

सुहाओ। जान के संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अस्पति पूरे गुरु का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पे साथ साथ सिमरो गोबिंद। मन अंतर की उतरे चंद। आस नित त्यागो तरंग संजना की तूर। मन मंग आप छोड़ बेनती करो। साध सगन संग अगन सागर तरो। हरदन के पर ले भंडार। नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो। गुण गोविंद ओंदरस पियो। चचित बो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल। दुख पंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार। नानक जी का ए आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमली। कलाले रतन संत कुमावत हो तो उधार। आप तेरे लोक निस्तार। सबल जीवन सबलता का संग। जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाद बाजे। सुन सुन आनंद करे प्रभु बाजे। पर ढे गोपाल महात के माथे। नानक उदरे तिनके साथे। सारन जोग सुनसरनी आए। कर कृपा प्रव्याप मिलाए। मिटके बैर पे सबरेन। अमृत नाम साथ संग लैन। सो प्रसन्न पे गुरुदेव। पूर्ण होए सेव की सेव। आल जाल विकारते रहते। राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभारी। नानक ने भी खे पमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत। सावधान का गरचीत सुखमनी सहज। गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान। सार विचार ताकी पूर्ण होए प्रधान। पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान। बौर न होवे आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए। नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नौ निद। बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध। बुद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान। ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रकाश। सबके मत सकल ते उदास। सुंदर चतर तत्का बेता समदसी। एक दिष्टेता ए पल तिशन के मुख भने। गुरु नानक नाम बचन मन सुने। निदान जपे मन को ए सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी। सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतान केवल हर नाम। गोविंद भगत कह मन विश्राम। कोट प्रात साध संग मिटे संत कृपा ते। जमते छुटे जाके मस्त कर्म प्रपाए। साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसे सुने लाए प्रीत। जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म

है। हुकम है अंदर सब को, बाहर हुकम न कोए। नानक हुकम है जे बुझे, तहु मैं कह न कोए।

तीर्थ नावा जित सुभावा बिन पाणे के नाए करे जेते सिर ठो पाए वेखा बिन करमा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर के सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चल सब कोए चंगा नाव रखाई कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवै ता बात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आ गुण दे

मन मार्ग ठाक न पाए मन पछ प्रगट जाए मन मग न चल पंथ मन धर्म सति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन पावे मुख द्वार मन परवार साधार।

कवण सरते माह कवण जथो आकार वेल न पाया पंडते देहो वेले पुराण वक्त न पाया।

है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है आकंज है बंज है जूज है जंज है मीक है रफीक है दंध है वंद है नूज है सूज है काल है जाल है ला है जा है नंत है महंत है अलीक है निरसीक है निर्वलंब है असंभ है अगम है जम है भूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग ब्रजाचंद नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वौणे नंगी नाते नंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे हनंगी नामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रवेश्रम परम रूपे नमो जोग जुवेश्रम परम सिद्धे नमो राज रवेश्रम परम विरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लो माता अपेखे परमे भोगे भुगते नमो जोग जय श्रम परम जुते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत परे देवे स्वर्मे नमो रोग हर्ता नमो रारूपे नमो साह नमो पू पूपे नमो दान दान्य नमो मान मान्य नमो रोग रोगे नमस्ते स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो श्रेष्ठ नमो तंत्र तंत्र सदा सदानंद सर्वनाशी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धाता परम परम परमेश्वर पुष्पाल सदा सर्वदा सिद्धाता दयाल शेदी पेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्तम तेरा जोर चाची छंद जले हैं थल हैं पीत हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं भेस हैं भजंग प्रजा चंदगादे बादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने नमस्त नराते नमस्तम परमाथे नमस्तमा गंजे नमस्तमा पंजे नमस्तमा काले नमस्तमा पाले नमो सर्वदेश नमो सर्व भेसे नमो राजे नमो साज साजे नमो शाह नमो मामा हे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोग हे नमो सोख सोख नमो सर्व रोग नमो सर्व भोग नमो सर्व जीत नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीज अखिजे पीजे समस्तम प्रसिजे कृपाल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वधार हृदय सदम नवासी चर प्रसन्न त्वय प्रसाद आमृत कर्म में वृत धर्म में खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भाने सर्व माने सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व देव सर्व भेव सर्व काले सर्व पाले रुआल शंत प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मन त्रमान देव पेव आद उदार सर्व पाल सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराजी अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जा जा कर रूप रंग न रेख आद पुरख धार मूर्त जो नाद सेख देश न भेज जा कर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा सा फैले राग नाम काम हीन पे गता मुह न जाय सर मन स्वतर मान से मानता एक मूर्त नेक दर्शन की नृप नेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाने जय भेद और देव रूप न जात पासो जानी के जेव तात मात्र जात चक्र जन्म मन विहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी प्रतिहीन लोक चौदह के विखे जग जापी जा जाप

देवनाद मूर्थावे सब जथाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार आ देवनाद मूर्थाप्यो सबे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सरचे सुम गण पंजनहार काल हीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष भंजन मुखदाय काम आप रूप मेकनो अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंग हीन भंगन आत्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोपृत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व देह अनपेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भागत नित्य

भुजंग प्रजा छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजलनामे समस्तल निवासे निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासे सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद शत्रम प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी जाय विभूते जाय गनी में हरियं करियं क्रीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वं स्वं सर्वदा सर्वजुगते दुकाल प्रणास

जिन प्रेम कियो तनी प्रपायो काउन पान पूज तेरे सिर काउन लिंगरे लटकायो काऊ लखे और वाची दिशावे काऊ पछाको शीश निभायो को बतान को पूजते हैं बस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बतान को पूजते है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे वाच बेनती चौपे अमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चन मारे हमारा अपना जान क्रोध पारा हमरे दुष्ट वे दूंगा वो आप दे मोह जाओ सुखी विषय मोर परिवार से सिख सवे करतारा मोर छान कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आशा दूर बन की रह प्यासा तुम शाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बरचाओ सो तुम ते पाऊ से सिख मारे तारिया चुन चुन सतर मारे मारिया आप दे मुझे उरिय मन काल का त्रास नवरिय जो सदा हमारे बच्चा श्री जो करो रक्षा राख लियो मोह राखण आरे साहे संत सहाय प्यारे दीन मन दुष्ण के हंता तुमो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जी अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रकाश सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताये हमारा जमन काल सब जगत मनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंत कह अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तेजी को हमारी सकल प्रजा ने आप सुवारी शिवकन को सब कौन सो दियो सतरन को बल मोद कियो कड़कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी दे कुंजर थूला सब पर कृपा का फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक के पीर पहचाने कड़कड़ के पड़ पड़ की जाने जबद कर करा करतारा प्रजा धरता दे अपारा जाबिया करख।

जिन नर नाम त्यारो कह दार दुष दोग ते रहा खड़केत में सन त्यारी आप हाथ दे ले ओ बारी सब ठौर मोहसाए दुष दोग ते ले उचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता किलविक सगल देह को हरता दुष दोखियन को सह करता श्री तुझा पह दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ काला मान वांछित बल पावे सोई दुख नंद से व्याप्त को एडल सुने गुंग जो जाय सरसना पावे सुने मूर चित लाए चतरता आवे दुख दर्द भौ निक नत नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपी को कह चौपी सम्मत सत्रह सहजपण जय अर्थ सहजपण तीन कही जय भाद्रो सुधी अष्टमी रविवार तीर्थ तद्रव गण सुधारा सोय पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नी आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सुबह वो भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना क्यों सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएंगे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्द ओतंगावो हरि के राम मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकारो करे तेरा कर सब सुवारण सबना गलां समर्थ स्वामी सो क्यों मन सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या ना ही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार ओ साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वस्या जेने इच्छा सब पुजाइयां सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिसदियां ए बड़ियाइयां कहे नान सुनो संतो शब्द रोपे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुदवस कीते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया जिनको से नाम हर कह लागे कहे नानक तैस गो आतित घर आनंद बाजे साची लिवे बिंदे निमाणी दे निमाणी लिवे बाजो क्या करे विचारिया दुदवास समृत कोय नाए कृपा कर बनवारिया इस नाव और थाओ नाई शब्द लाग सुवारिया कहे नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह तुटा तिनका सब सच्चे सवारिया कहे नानके ओ आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोए जन पावे पावे तां सो जन दे जिसनू होर क्या करे विचारिया एक भरम पूले फिरे दह दिसक नाम ला सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कहे नान जिस दे प्यारे सोई जन पावे आओ संत प्यारियो कथ की करा कहानी करा कहानी कथ गेरी के द्वारे पाई है तन मन धन सब सम गुर को हुक्म मनिये पाई है हुक्म मनियो गुरु केरा
गावो सच्ची बाणी कहे नान सुनो संतो कथियो आ कथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आए माया मोनी जिने भरम भुलाया माया तो मोनी तिने कीती दिन ठगोली पाईया कुरबान किया तिसे विटो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले एह कुटुंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले साथ तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चलाइए ऐसा कम मूले ना कीचे जे तंत पछोताइए सतगुरु का उपदेश सुन तू अवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत समाले आगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतु न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या गो आप खाने आखे तां वेखे सब तू है जिन जगत पाया कहे नान तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन्म खोज दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन मसाया जी जन सब तू तो पाए वेख परसन आया लभ लोभ अंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नान जिसनु आप तुठा तेन अमृत गुरते पाया भगता की चाल नाली चल ला नाली भगता केरी बिखम मार चलना लभ लो अंकार त्रिश्ना बहुत ना ही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तार वासना समाणी कहे नान चाल भगता जुग जुगो हो जुग नाली ज्यो तू चलाए ते चले स्वामी होर कह जाना गुण तेरे जिब तू चलाए ते वे चले जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हरा सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नान सच्चे साहेब ज्यो भावे तिवे चलावे हो सोए ला शब सुहावा शब दो सुहावा सदा सोला सतगुरु सुनाया एहो तिनके मन वसै जिन धुरों लिखिया आया फिर एक नेरे करे गल्ला गली किने न पाया कहे नान शब्द सोला सतगुरु सुनाया पवित हुए से जना जिनी आर त्याया आर त्याया पवित हुए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटाम सहित सो पवित संग सभाया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नान से पवित जिनी गुरमुख हारा त्याया करमी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कि संजम धोता जाए मन तो वो शब्द लागो हरसो रहो हो चित लाए कहे नान गुरु प्रसादी सहज उपजे सहज साहिब जाए जियो मैले बारो निर्मल मारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मन मनु मसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाए फिरे ज्यो बेतालिया कहे नान जिन सच तजा कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारों ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पोचे नाही मनसा सत समाणी जन मृतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुण नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे होवे त सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुण नाले गुर के चरण हृदय ध्याए अंतरात्मे समाले आप छड सदा रहे पढ़ने गुर बिने और न जाने कोए कहे नान सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जेको गुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न उरते कोई पुछो वेख किया जाए नेक जूनी भरमावे बिन सतगुर मुक्त न पाए फेर मुक्त पाए लाग चढ़नी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नान विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सरबाणी जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तिना समाणी पीवो अमृत सदा रो हर रंग जप सार बाणी कहे नान सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आव खाणी आर हर नित करे रसना गया कसुना जानी

हर आपे चगर चुकावे, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जीओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरां दी पार बख्शिश रहमत दा सदका, ग्रीनवाज दियां बख्शिशां अमृत वेले तों जो माई भाई सतगुरां दी इलाही बाणी सरवण करदे हो, सतगुरु रहमत कन आप सारिआं दी हाजरी दर प्रवान करन, नरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन। सो आओ अमृत वेले दा सुहावना समान, जिसनों साहिबा ने मोहर लाई है कि अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, इस समा उस महान गुरु दियां वड्याइयां दा समा है। उस वड्डे क्या वड्याइयां किश कहना कह ना जाए। बाबा जी बचन करया करदे सन, भाई अपने गुरु नूं वड्डा कर सलाहीए, वड्डे तों वी वड्डा कहो, क्योंकि सब तों वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਆਬੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

करता रखे पत। वह अपना परोपकारी सुभा नहीं छड़दा, कोई निंदा करी जांदा ते पुकार के कहिंदा नंदो नंदो मौको लोग नंदो। नंदा जनको खरी प्यारी खरी खखा खखा रारे नू बिहारी खरी। आम ये गल जे कोई चीज खरीदो ना तुसी ते हुशियारपुर दी आम बोली है दुआबे दे इलाके दी, चीज बड़ी खरी है, खरी तो भाव बड़ी चंगी है, बड़ी वधिया है, बड़ी पाएदार है, खरी प्यारी। कहिंदे जिहड़ी निंदिया है ना जिहड़ा सेवक जदों करदा कहिंदा चंगी है बहुत वधिया निंदिया कीती है। नंदा जन जन दा अर्थ है सेवक, सेवक नूं तां चंगी लगदी है, उहदा भला हो रहा है। निंदा जन को खरी प्यारी इथों तक बोल कह दते। कहिंदे निंदा बाप निंदा महतारी, मेरी मां निंदिया बन गई है, जिवें मां बच्चे नूं सवारदी है ना निंदिया करन वाला पुरश, तेवें मैल धो धो के जिवें मां बच्चे नूं नहाउंदी है, सोहणे कपड़े पाउंदी जे सवारदी है, ते जिवें जिवें निंदिया उहदी निंदिया करदा उहदा जीवन सुधरदा जांदा है। तां मां आखिया, एवें मां नहीं आखिया, मां सवारदी है ना बच्चे नूं, ते निंदिया करन वाला जिवें जिवें निंदिया करदा उहदी मैल उतरदी जांदी है। कबीर जी कहिंदे मेरी मां बन गई है, मां सब तो प्यारी हुंदी है, इह मेरा प्यारी है। बाप बड़ा हितकारी हुंदा है, वह भी बाहरों कमाई लिया के खवाउंदा, कहिंदा मैनूं कमाई करन दी लोड़ ही नहीं, मेरी निंदिया करी जा रहे, मेरी कमाई आपे ही वधदी जांदी है। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा होए तां। हुण बोल दी गहराई वाले चलियो, निंदा होए तां, तां जे निंदिया हो जावे ते बड़ी वड्डी गल है, तां की होए बैकुंठ जाइए। कबीर साहब जी कहिंदे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, बहुता कुछ करन दी लोड़ नहीं रहिंदी। एक शब्द मेरा साहिबां दा होर आउंदा है, कहिंदे निंदिया करन वाला पुरश नेका पुन वाले कर्म कर लवे ना, नेका पुन वाले कर्म कर लवे, ठाठ तीर्थां ते यात्रा कर लवे, बारह सिलां भी पैदा करके उहनां दी पूजा कर लवे, ग्रहण लगे होण इथों तक जमीन जायदाद दान कर देवे, इथों तक एक सोने की औरत बना के उस औरत नूं होर शिंगार ला के वह भी दान कर देवे, इथे बस ना होवे अपना बिगाड़ के। बड़ी औखी गल है, आम किसी का काम करो कहिंदा जी मैं अपना बिगाड़ के तेरा सवारिया, अपना बिगाड़ के ते दूजे का सवारदा भी होवे तां साहिब जी कहिंदे जे निंदिया कर लिया ते सारा खूज पा लिया। जे बोल बड़े प्यारे ने, जे वह अठ सठ तीर्थ नहावे, अठ ते सठ ठाठ, जे वह अठ सठ तीर्थ

सब परिवार शांति नाम दियां दाता बख्शनियां किरत कमाईयां विच वादे पाउणे सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां बख्शियां खजानियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग लंगर सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय आप जी दा सीध प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जप।

असंख नावे असंख तावे अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह

चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे इंद्र इदासन बैठे देवतियां तरना ले गावे सिद्ध

एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया एव तिन कै मन वसिया, जिन धुरों लिखिया आया। एक फिर कनेरी करे गल्ला, गल्ली किने न पाया, कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होई सीजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित सियो, पवित संगत सबाइया, कहिंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख।

आप छड सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोए, कहे नानक सुनहु संतो हो सो सिख सरम खोए।

न जानी गुरु बाजा हो तत्तै सार न जानी तेहि गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रैण बहाणी गुर कृपा तेसी जन जागे जिन हर मन वसिया बोला है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो आन दिन हर लिव लागे जागत रैण बिहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनह विसारी है मनह क्यों विसारी है ए वड़दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे ओसनो के पोए न सके जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिय कहे नानक के वड़दाता सो क्यों मनह विसारी है।

गुरु प्यारी साध संगत, थोड़ा समा जो बख्शिश होया है गुरु दरबार विचों, आओ सारे मन बिरतियां गुरु चरणा नाल जोड़िए। अज एक महान हस्ती परम पूजनीक बंदगी दी मूरत दरगाही महापुरख संत बाबा जी सिंह हंसाली वालियां दे याद विच जन्म दिहाड़े दी खुशी विच गुरु के संगतां याद करके दिन मना रही हैं। आओ श्रद्धा दे फुल असीं भी अर्पण करिए। आओ दो मिनट सिमरन करके मन बिरतियां गुरु चरणा विच लै जाइए, फिर शब्द नाल जुड़दे हैं। सारे कृपा करियो, कोई रसना खाली ना रहे।

प्रभु के सिमरन जपता पूजा प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ सुनाने प्रभु के सिमरन दरगाह माने प्रभु के सिमरन हो सो पला प्रभु के सिमरन सुफल पला से सिमरा जन आप सिमराए नानक ताका लागो पाए प्रभु का सुमरण सबते ऊंचा प्रभु का सुमरण उदरय ऊंचा प्रभु का सुमरण तृष्णा बुझाए प्रभु का सुमरण सब कच सुझ जाए प्रभु का सुमरण ना ही जमतरासा प्रभु का सुमरण पूर्ण आशा प्रभु का सुमरण मन के मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभु जी बसा साध के रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से तनवंत प्रभु को सिमरै से पतवंत प्रभु को सिमरै से जन परवान प्रभु को सिमरै से पुरुख प्रधान प्रभु को सिमरै से बहुमोहताज प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नाने जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तनु सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तनु सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कब हो न चूरै प्रभु के सिमरन हर गुण बाने प्रभु के सिमरन साई समाने प्रभु के सिमरन रह चले आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन

सेवा हर हर जन कै मालिक दीना हर तन जन को आप्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवरना जानी ओत पो जन हर रस रात सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपाय हर का भगत प्रगट नहीं छपाए

निमक निमक से कटाबाए तो पी हो मैं मैल न जाबाए हर के नाम समझर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जबत गत पाहे।

जो शरणा सु असर कर मान जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका स्वरम कर संग सहाय तिस पर हराय।

संग सहाय सुवाबै न चीत जो बैराई तं सुप्रीत बलुआ के ग्रह पितर बसाय आनंद केल माया रंग रसाय दृढ़ कर्मा न

करे जिस ठाकर सो नाही चारा तंको की जय साध नमस्कार जाके मन लागा प्रमिठा सर्व सोगता हो मन उठा जिस जने अपन

जयपरसाक्षतय मृदखायतस्ताकर्को राघवन्वाहे जयपरसा सुगन्धन्तन्लाभ तिस्को सिमृत परमगतपावः।

साधक संघ मुख उज्जल हो तो संग मल सगले खो साग संग मिटे अभिमान साग संग प्रगटा सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नेरा सा संग सब होत नबेरा साग संग पाए नाम रतन साग संग एक ऊपर जतन

कर साधक संग नाहि को मंदा सा संग जाने परमानंदा साग संग नाहि अवताप साग संग तदे सव्याप।

भाई सा संग बस गोचर लह साधु के संग अजर सह सा संग बस तानु चय साधु के संग मैल पहुचाय।

श्लोक मनसाचा मुग साचा सोए अवर्ण अपेक्षा एक सुबिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेव जैसे जल में कमलयाले ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख है।

पाया। ब्रह्म ज्ञाने सदा समदर्शे ब्रह्म ज्ञाने के दृष्टर्यमृत वर्षे ब्रह्म ज्ञाने बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञाने के निर्मल जुगता।

ब्रह्म ज्ञानी के कृपे सम महा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी क्या हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संसगल उदार नान ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार

कैकोर सूर्ण कतर कैकोर देव दान इंद्र सिर छतर सगल सामग्री अपने सुतारे नान जिस जिस पावे तिस तिसने साराय कई कोड़ राजस्थान सात कई कोड़ वेद प्राण सिमर तर सात कई कोड़ की रतन संबंध कई कोड़ नाना प्रकार जनता

नहीं मैं तो संघ दुखी को डन लागे, संघ दुखी को सब त्यागे, संघ दुखी में अहंकारी, संघ दुखी सदा विकारी, संघ दुखी जन्म मरा, संघ दुख न छूते डरा, संघ दुखी को ना ही ठाव, नान सुन पावे जन लय मिलाए, संघ दुखी अल बीते टूटे, संघ दुखी के दे काज न पहुंचे, संघ दुखी को ध्यान भरमाइए, संघ का दुखी उजड़ पाइए, संघ का दुखी अंतर ते तो ज्यों सास बिना मृत की लोता, संघ दुखी

ले तड़पड़ाए संत का दुखे भूखा नहीं रहते जो पाव के दन त्रापे संत का दुखे जुटिया केला जो बुआर तिल के तुम्हारे दोहेला संत का दुखे धर्म तेरा संत का दुखे सा मिथ्या के अधिकृत नंद का तुरही पया नाना ज्योति पावे सोई थिया संत का दुखे बिगड़ो पो जाए संत का दुखे को दरगाह मिले सुधाए संत का दुखे सुधा सकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजे ना आसवा संत का दुखी उड़ चले निराशा संत का दुख न

मन तन्मुख बोले हर मुखे सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सो जी जाने नाम संजत का मन माने नानक तिने निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपन आप सुजय तिस की जानो तृष्णा बुझ जाए।

धनमंत प्रभु के सेवक सगल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे में ले कृपाल गुरु का सब जब भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ पागे नाम जो पावे विश्राम नानक तिन पुरुको उत्तम करमान जो किस करा सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सबाय हुए सोए करने हर बचाने सोए प्रभु का गया जन मिट लगाना जैसा सत्य सदिष्ठाना जिस थे जैत समाय समाय ओ सुख निदान ओनुहु बन आए आपस को अवधिनो मान नाने प्रभु जने को जान सुलो सर्व कला पर पूर प्रभ बिरता जानन हार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बल हार अष्टपदी टूटे कारण हर गोपाल सर्व दिया पै प्रतिपाल सकल की चिंता ते सुन माए तिर से विरथा कोई नाए रे मन मेरे सदा हरदा पवना से प्रभ आपे आप।

तावे क्या को कर बे जा सब कुछ तुझका दिया डर बे या सूरा देखो कहावे प्रभु की गला बिना कहता वे देखो हो बह दाता देना जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को थाम थमन त्यो गुरु का सोद मने असमन ज्यो पखान नव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तराय

सब बोले यार चरण साध के तो पियो अर्व साध को अपना जियो साध के दूर करो स्नान साधु ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़पा की पाइये साध संगर कीर्तन गाइए अनेक भगन ते साधु राखे अर गुण गाये अमृत रस जाखे

के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जस अपने नाम लाए नाने चौथे पद में सो जन गत पाए रूप साजा का सत्य तान पुरख सद केवल प्रदान करतूत सत साजा के बाणी सतपुरुष सामय सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पाद सत करणे निर्मल निर्मले जिस बताए तिस सफले सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत

जिसके सिर सो करने हार वरना बोझ करत विचार करते किमित न जाने किया नाना ज्योतिष पावे सो वर्तिया विस्मर विषम पै समाजन बुझया तिस्ताया स्वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुरु के वचन पदार्थ लाए है। ओय दाते दुर्घटन हार जन के संग तरह संसार जन का सेवे सो बड़ पागे जन के

सप्रभक्त सुरत सत सत दस सुनता भोजन हर को सतसव हो नानक सत सप्रभ सोए सत सुरदय जनमान खरण खराव त्रमोर पछाण्या जा कह हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिज मन प्रगटाया पैत निरपो हो बसाना जिस तव जत समाय समाना बस माय लै बस गटाए तको बिन न कहना जाई बुझे भोजन हर बबे नारायण मिले नानके ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन परते ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक दया प्रतारे नाने सो सेवक सास सा सुमारे अपने जन का प्रदा ठाके अपने सेवक के सर पर राखे अपने दा को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गतमत को न लाखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नाने सो सेवक दा दिस भगताया नेके गेरे में कल राखे बसम कर लश्कर कोट लाखे जिसका शासन काटते आप ता को राखत देकर हाथ मान जतन कर्तव्य भास जिसके कर्तव्य बिरते दात मारण राखे अवन कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे।

सात प्रभु जन जाने सदगुरु तुझका नाओ तुझके संग सिकोदर नानकर गुण गाओ अस्पति सदगुरु सिख करे प्रतपाल सेवको गुरु सदा दयाल सिख के गुरु दुरमत मल हिरा गुरु वचनी हर नाम उचराय सतगुरु सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकारते हटे सतगुरु सिख को नाम तंदे गुरु का सिख उड़ भागी है सतगुरु सिख हर पल सुवारे नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आपस को कर का चना जनावे हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे से गुर के पाथ सेवक के कार्य रा सेवा कर तो ने कामी तिसको होर प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाने सो सेवक गुर की मत ले बीस विषय गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु दूसरे देर नाओ मन कुमार गुर को बल जाओ सर्वदा